0: सच कह जे हुंदा।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है,
1: गुरु दी पानी सच है, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल।
1: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन लई कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763।

0: Rancho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी नींबू।

0: underwriter and certified health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशन विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
2: हाँ जी ब्रैम्पटन दे विच असीं जी नॉन ब्रांडेड ऐसा का रेस्टोरेंट लेके आए हैं इहदे विच तकरीबन 30 बंदियां दे बैठन दी जगह है फुल किचन 1300 स्क्वायर फीट तो उत्ते इहदी लोकेशन ही है बड़ा थोड़ा रेंट हीगा जी इहो जी लोकेशन वास्ते तुसीं डेफिनेटली लभदे पे होगे जिथे तुसीं अपना ब्रांड या अपना कुजीन या अपना जिहड़ा हैगा वे फूड ले आ सको इहदे वास्ते कॉल करनी होएगी 6479884449 हसीब शेख कॉल करना 6479884449 हसीब शेख सेवा दा मौका जरूर दे
3: ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਚਨ ਚ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਖੜੀ ਕਰਤੀ
4: ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲਾਂਡਰੀ ਸੈੱਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ 801 ਬੋਬੇ ਡਰਾਈਵ ਨੀਅਰ ਚਕੂਜ਼ੀ 905-450
5: तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
4: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
6: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दे ने रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकदी है नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नु फोन करो 6477409600 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ
7: A1 Cakes and Pastries 1997 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਕਸ ਪੇਸਟਰੀਸ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੇਕਸ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ
8: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
9: Toronto's number one station, AM 530.
10: Punjabi Versa!

मैं तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। चाहा है तुझे, चाहा है तुझे, चाह से भी बढ़कर मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान इंतहा है तू। पंजाबी विरसा वैद, द वन एंड ओनली मैन सिंगर जी दे। छोड़ दिया उनको जे कहकर तू बेवफा नहीं, छोड़ दिया उनको कि वो बेवफा नहीं, बैठे थे तन्हा में अकेले तो सोचा, ओ मेरी जान आपने तो वफा भी नहीं की।

0: 1630.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32 55 80
2: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 फुट दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
0: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton

0: 877-670-6609. Culture of Punjab. Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street or call 905-791-4900.
1: Indian Fruitland, one stop for all your grocery needs.
2: ले इको जगह तो कितने सारा कुछ मिल रहा दो चीजा ले एक जगह रुको फिर अगलियां दो दी दूसरी जगह रुको
1: इंडियन फ्रूट लैंड है सच्ची वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स सब तो वधिया ग्रोसरी सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन
3: आई एम डेव पाटला And you are not. Muskoka under 1.5 acre te 2600 square foot di cottage sale te aayi hai. 3 bedroom, 2.5 washroom han. High end de furniture na fully furnished hai. $30,000 da generator ate 14 by 14 feet da pad bhi baneya hai. 2 saal di navi cottage $100,000 di income generate kardi hai. 12 by 30 foot da deck hai plus walkout basement bhi hai. Muskoka room bhi furnished kita gaya hai. पीछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
4: हर कोई चाहता है कि ओदा घर सब तो सोना दिखे ते जे तुसी भी यही चाहते हो ता मिलो ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग कंपनी लिमिटेड वालेयां नू जे अपने घर दे बैकयार्ड नू बनाना चाहते हो होर भी खूबसूरत या फिर करवाना चाहते हो लैंडस्केपिंग या इंटरलॉकिंग सारा काम टॉप दा करांगे अते सब तो बेस्ट रेट्स भी देंगे ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग कॉल 647-784-1213 647-784-1213
5: गल ऐदा है कि तोड़ा ना दांद कढ़ना पड़ेगा
6: ओ डॉक्टर साहब कितने के पैसे लग जाएंगे जी
5: लगभग 300 रुपए
6: अच्छा तो सीधा करो 50 रुपए ले लो थोड़ा जा टिल्ला कर दियो कढ़ मैं आप ही लेना
5: है
7: फट्टे मुतेरे

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets ni pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services ni pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
9: 416-570-0157 416-570-0157।
10: सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा दो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार ना दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लै

0: कहीं भी कैसे भी खर्च करें, लेकिन हाँ कैच
1: चाहे पेंशन में आउंदी
0: है, एक कैच है इसमें।
1: कैच दसो पहले तो बाकी गल्लां बाद च।
0: 22 जुलाई के बाद
1: हाँ
0: सब लोन आएगा, गवर्नमेंट कट कर रही है ग्रांट्स में।
1: अच्छा,
0: आज के दिन एनरोल करा, स्टार लगा के, अभी वैलिड है चीज,
1: जाके
0: अभी वैलिड है, आज वैलिड है ये। ये नहीं क्या एक महीने बाद आएंगे सर, गवर्नमेंट ने रूल चेंज, हम तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे काम करते हैं ना, हमारा ऐसा नहीं है आज फादर्स ने 100% ऑफ कल मदर्स ने 10% ऑफ।
1: मेरी गल सुनो, जेड़ी उन्होंने पेंशन तुसी कहता
0: हां
1: कि मदर फादर ने जेड़ी हैगी अजे रिटायर्ड भी हैगे
0: आ,
1: उन्होंने 45,000 आ जाऊगा।
0: यस
1: अलग
0: 100
1: ओदा पेंशन नाल कोई लेका देका नहीं, कोई पेंशन ना, ये नहीं भी रुक जाऊगी जां कुछ, नथिंग
0: कुछ नहीं होता उसमें,
1: वो अलग
0: गारंटीड,
1: वो गारंटीड। ओके, ते जेड़ा मैं तुम दसा कि उन्होंने बेटा वा, जे हुण ओदे कहां दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ ने दो उन्होंने बच्चे आ, उन्होंने नु अलग किन्नी आ जाऊगी?
0: $80,000
1: अलग उन्होंने,
0: यस $80,000, इसमें से $40,000 ग्रांट ग्रांट ग्रांट है जो वापस ही नहीं करना उन्होंने, जो रेस्ट 40,000 है डेढ़ साल बाद वापस करना स्टार्ट करना है, 10 साल में वापस करते हैं 40,000 का 44,000 ही वापस करना है 10 साल में, मतलब एक साल का ब्याज कितना हुआ 4,000 डिवाइड, इसका मतलब बहुत कम, आप मान के चले इससे नो क्रेडिट चेक, और ये ऑप्शनल लोन है, कुछ लोग ग्रांट से ही खुश हैं, ग्रांट से ही खुश रहे हैं आप।
1: हाँ मैं तो कहना लोन तो जरूरी है जी, जिहड़ा तुसी जे कहंदे 50,000 दा लोन, 55,000 तुसी 14 साल 10 साल बाद पे करना,
0: क्योंकि ब्याज दर 2.5% है
1: सारे साल दा,
0: पूरे साल का 2.5% जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब
1: कुछ भी नहीं जी उस हिसाब नाल,
0: $34 पर मंथ इज द ब्याज, दैट्स इट।
1: नंबर नोट कर लो, इदों घट हुण कित्थों, इत्थे इन्ने दा तां बंदा पिज्जा नहीं आउंदा हैगा, है ना,
2: इस तों बाद तां रब दा
1: नाम, इस तों बाद तां फिर उही आ, ओह जिवें कहंदे नहीं है, ओह तों बाद जिवें जे गन्ने दा रस पीने ना, ओह पहलां गन्ने दा रस कहंदा वी बाजी ओह गन्ना पाण दे विच, ओहदे फिर उहनूं धूरा कर दिंदा, फिर उहनूं तीरा कर दिंदा, फिर उहनूं चौरा कर दिंदा, फिर उह तों बंदे नूं लगदा वी दे दे यार पला दे हुण बाहु पिया लगी हुई आ, फिर उह च नींबू रख लैंदा कट्ठा जिहा करके, उह नींबू रख के फिर दूरे जिहा बल जिहा दे के उहनूं, फिर बंदा कहंदा लै हुण तां गल बण गई हुण दे दे, फिर उह कहंदा पुदीना वी पा दवां, उह कहंदा तूं जान कढ़णी है यार गन्ने दी हुण कहां, सो उह कम आ सरकार कहंदी भाई तुहानूं असीं गन्ने दा दूरा चौरा करके उत्ते नींबू रख के आह देती ग्रांट, आह चक्को लोन, जे हुण कहंदे 2.5% तों वी थानूं थल्ले दे दिओ, फिर तां उह जान कढ़ण वाली गल ही है सरकार दी, है ना,
0: गवर्नमेंट पॉलिसी
1: है, हां इदों हां घट कुछ नहीं हो सकदा हैगा, साल दा 2.5% ओह वी फिर
2: जी बिल्कुल,
1: पर वड्डी गल आ कोई तुहाडा घर नहीं चाहीदा, कोई तुहाडी गरंटी नहीं चाहीदी, कोई तुसीं चाचे मामे वासी भूआ फुफ्फण नूं लै के नहीं ग्रंटर दे तौर ते साइन करदे, कोई गरंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़े कोले चाहे घर आ चाहे कार है नहीं है टेंशन ही कोई नहीं है, कहिंदे बस तुसीं आओ ते अप्लाई कर देना, अप्रूवल तुहाडी आउंदी आ ते तुसीं नाल अकाउंट चैक करदे रहो 30 दिनां च 60 दिनां च, जदों ऐन रौनकां जिहियां लग गईआं अकाउंट, तुहाडे चेहरे ते आ गई समाइल, फुल्लिया होइआ मिलूगा तुहानूं फुलका, देखियो फिर नज़ारा ही आ जाणा, तो नाले तां तुसीं आपदा कोर्स कर लैणा, नाले तुहाडे अकाउंट दे विच रौनक लग जाणी आ, लैणे देणे लै जाणे आ, गल नंबर एक तुहानूं घुमाउणा पैणा 437-264-3175 437-264-3175 हाँ इस नंबर से हमने कॉल कर लो तो तुहानूं बाकी सारी इनफॉर्मेशन वह दे देंगे, आ लाहा लै लो जिहड़े अज्ज लै सकते आ, बापू बेबे जिहड़े हैगे आ चक दो फटे कर कह दिओ कि बापू चक दे फटे आना कर, हुण आउण दे जवाकां नूं फट जिहड़े।

0: धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से कहा तो उन्होंने धीरे धीरे से दिल को चलाना भी छेती देने नहीं आ सकता बंदा जिंदगी से, कोई नुकसान हो सकता, रफ्तार घट करने की गल कर रहे हैं कि स्पीड घट रखो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चलाना। ग्रांट कहते छेती छेती आ जाए, बाकी काम छेती छेती सारे काम काम। अच्छा बंदा कहना छेती छेती ब्याह हो जाए, छेती बच्चे हो जाए, छेती वह बड़े हो जाए, छेती यूनिवर्सिटी चले जाए, छेती ग्रांट आ जाए, छेती अपलाई कर दिए, एक चीज़ है जो कहना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
1: ऐसा है वैसे, लाइक आज अगर किसी ने अप्लाई करा है हमारे साथ,
0: थोड़े तक कल खा जाते होने हो,
1: हमें तीन दिन में सर हमारा क्या स्टेटस है,
0: तेरा क्या है, इतनी छेता पीजा नहीं होता जिन्नी छेती बंदा वीजा पाड़दा, जब तो वीजा भी अप्लाई की तो फिर भी बंदा कहता छेती भाई आया नहीं अजे कुछ, है ना।
1: आप पहले बोलते जी 30 से 90 days लगेंगे,
0: यानी 30 to 90 days लगने
1: हैं, लगने हैं जी,
0: लगते हैं।
1: ये सीबा लोन की तरह नहीं, गवर्नमेंट पहले पैसे फेंकेगी बाद में बोली अरे गलती से भेज दी वापस,
0: तो गीत ला के रख लगा करो फोन पे, धीरे धीरे से हौली हौली फोन करना। सो लो जी भाई मेन वड्डी गल ये है कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े उन्हां नूं ये लगता हुंदा कि यार इन्ना सौखा नहीं है कनेडा च, खास करके जे आपां घर ते भी कोई लोन लैणा होवे, यार गड्डी दा लोन नहीं इन्ना सौखा तां मिलदा भाजी, जिवें तुसीं दस रहे हो गड्डी दा लोन लैण लई वी 100 documents मंगदे
1: आ, गड्डी दा लोन आपको गवर्नमेंट देती है
0: नहीं दिंदी,
1: तो बस फिर बात ही नहीं है ना, जब गवर्नमेंट $1 billion फीफा वर्ल्ड कप में लगा देती है।
0: अच्छा $1 billion लाया उन्होंने,
1: $1 billion जॉब रिपोर्ट ज्यादा क्यों आई है इस बार,
0: $1 million फीफा थे,
1: जॉब रिपोर्ट्स ऊपर क्यों आई है इस बार, इन्फ्लेशन है, अगले 2 months में देखना कहां जाएंगी जॉब रिपोर्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा फेंका तिजोरी से, बड़ी बड़ी कंपनी स्टेडियम्स को दिया, उन्होंने एम्प्लॉय करा, जॉब नंबर्स अप गए, ओके सो दैट्स अ डिफरेंट साइन, जब गवर्नमेंट लाइक अब गवर्नमेंट ने 100 million लगाया है, 100 million किस लिए लगाया है, जो देश के बाहर जो और कंट्रीज हैं उनमें छोटे बच्चे फुटबॉल खेल के फीफा में एडमिशन ले पाए, 100 million की फंडिंग गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की वेबसाइट पर जाए और चेक करें, ओके जब गवर्नमेंट इन चीजों पर पैसा लगा सकती है तो गवर्नमेंट एजुकेशन में लगाती है सेम वे में, कोई कैच नहीं है इसके अंदर, और इसमें लाइक अगर आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, आप ओंटारियो में किसी भी सिटी में रहते चाहे नायग्रा, हैमिल्टन, बैरी, नो एज लिमिट।
0: अच्छा एक चीज और दसो, कई बार बंदे ने ग्रांट भी ले ली, लोन भी ला लिया, बाद ग्रांट तो वापस करनी नहीं है,
1: बिल्कुल जी,
0: लोन 1.5 साल बाद वापस करना,
1: उन्होंने लोन डेफर करा लिया 1 साल
0: कर देंगे,
1: हाँ गवर्नमेंट है,
0: अच्छा
1: 2 साल डेफर करा लिया, 3 साल डेफर करा लिया,
0: अच्छा
1: मजबूरी समझती गवर्नमेंट,
0: हाँ 3 साल कुछ नहीं देना तुम,
1: कुछ भी नहीं, लोन 3 साल के बाद स्टार्ट हुआ उनका, फिर
0: आई भी हो जाता है,
1: हो जाता है, गवर्नमेंट है
0: कर दें दिया, उन्होंने पता यार बंदा, हाँ जो उन्होंने मजबूरी बाकी जाना पै गया, कहते होर भी जाना पै गया,
1: मजबूरी वाली बातें तो फिर समझते हैं, बैंक थोड़ी जो उठा के ले जाएगा,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: है ना, तो वो चीज है, तो इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, तो इसमें मेरा नहीं आपका नुकसान है, हमारा तो एक छोटी सी फीस है, आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, तो इसमें लाइक 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें जिसका आधा पैसा आज की रेट में नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है।
0: हाँ जी ये लोन भी जो होंगे जो बंद को कोई मौके पर अगला कहना यार मेरे को हूँ 4 पैसे है ठीक है कम सही हो गया है ना 3 साल बाद 4 साल बाद यार मैं कोई होर हूँ कोई लोन लेना कुछ होर करना मैं मॉर्गेज लेनी कुछ भी करना भी मैं पे ऑफ कर देना मैं गड्डिया का ओपन लोन कह देना
1: ओपन है
0: पर ये ओपन है
1: बिल्कुल ओपन है मैंने अपना खुद का 3 साल में पे कर दिया था
0: जो तो मर्जी पे कर दो
1: राइट 3 साल में पैसे इकट्ठे
0: हो गए 20,000 चाहे 20,000 की किस्त बना लो चाहे 20,000 तुम वन टाइम ही पे कर
1: यस सही में
0: कोई पेनल्टी नहीं है
1: पेनल्टी नहीं है इस पे
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट
0: कोई तो नहीं जब आप मॉर्गेज पहला कहने के जो पहला पे करनी चाहते हैं तो कटानी चाहते हैं कुछ गई है भी वह 3 महीने का इंटरेस्ट रेट पैजू या कुछ ए कुछ नहीं है
1: इसमें नहीं इसमें एक और बड़ी चीज है बताऊं अगर हमें डीप जाना है
0: हाँ थोड़े डीप चलो
1: हाँ चलो बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे चलते हैं
0: हाँ चलो
1: मेरे घर की किस्त है $2,500
0: हाँ
1: जब मैंने घर लिया था तो उसमें से $1,500 ब्याज था 1,000 टूवर्ड प्रिंसिपल था
0: अच्छा
1: समझे 2500 किस्त में
0: 1,000 प्रिंसिपल उतर 1,500 ब्याज ही जाता था
1: अब आप इधर आ जाओ इस वाले लोन पे
0: अच्छा
1: 17,000 का लोन है 162 की किस्त है $22 इंटरेस्ट है ऐसा नहीं कि सारा पैसा इंटरेस्ट में जाएगा पहले
0: प्रिंसिपल
1: जैसे मॉर्गेज में होता है सारा पैसा इंटरेस्ट में जाता है
0: हां जाते
1: पहले शुरू में इंटरेस्ट में जाता प्रिंसिपल में कम यहां पे डे 1 से प्रिंसिपल में ही ज्यादा पैसा जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और फ्लैट चलता है, मतलब $22 ब्याज हर महीने का एवरी मंथ सेम फॉर 10 इयर्स। यहाँ पे कैसा है, पहले चूस लेते हैं मोर्गेज वाले बैंक्स पूरे बंदे को 10-15 साल, फिर बाद में प्रिंसिपल में ज्यादा पैसा जाता है, राइट। इट्स अ वेरी गुड थिंग आप लाइक स्किल हासिल कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सीखे, 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें, आधा पैसा तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, कॉल करें, हमारी फीस काम होने के बाद कितनी है जी, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैश,
0: $199
1: मुझे आज 6 ट्रैक आए हैं, सबने 200 भेजे हैं 199 की जगह।
0: अच्छा,
1: $1 लोग ज्यादा दे देते, खुद से ज्यादा दे देते हैं, हम मांगते नहीं है,
0: वो कहते हैं बद लो जी, तुझे देखो बद के ना देंगे $200 जरा। अच्छा, कहते 6 इंट्रैक्ट आ गए, बढ़िया
1: जो कहते शर्म आती 199 देते सब 200 ले जाओ।
0: सो भाजी हमने तुम कॉल कर लो, इन्हों की टीम है जी वो तत्पर लगी हुई है, क्योंकि जे मैं तुम दस कि कोर्स है जो भरे जा रहे हैं, जो इन्होंने कोर्स भर गए तुम कहना भाई जी एडवर्टाइजमेंट कर देता है हो, तो अलग अलग थावान इन्हों की चलती है, पर भी सानू तो कहते हम थोड़ी सीट ही है नहीं, इन्होंने कहना कोई कोर्स
1: चार सौ सैंती 274 3475 4 3475 4 3475 4 3475 ते तुसी गल बात कर सकते हो जुड़े हो रेडियो प्रोग्राम सारण।

0: 32, 55, 80, 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस।
2: वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम मनी मेकर। अज असी तुहाडे लई इक खूबसूरत कॉटेज लैके आए हैं जिहड़ी कि मुस्कोका दे विच लोकेटेड है। 1.5 एकड़ तो लैके 2 एकड़ दे विच बनी हुई है। 2023 दी बिल्ट है। 3 बैडरूम 2.5 वाशरूम ने। मेन फ्लोर ते लिविंग डाइनिंग ते फैमिली एरिया ने। प्लस एयरबिन ते पिछले 2 साल तो बिजनेस कर रही है। 2025 दे विच $90,000 का प्लस ने बिजनेस किया है एयरबिन तो। सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के उपर बीच है। 15 मिनट की ड्राइव के उत्ते डाउनटाउन हंट्सविल ने। 15 मिनट की ड्राइव से गोल्फ कोर्स है। जे तुसी इस कॉटेज नूं देखना चाहते हो, इस कॉटेज नूं बाय करना चाहते हो, राइट वे कॉल 416-265-2222। जे गंडम कॉल 416-265-2222।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: 053 सुपरमार्ट और कैसा लेदर, इको ही कंपनी दा नाम।
5: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाली विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नु मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो, इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही Call करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 6457-3381 ते.
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444
1: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 5:30 तो।

0: सो नंबर एक क्या 416-994-7272 416-994-7272 सिमरन थैंक यू सो मच
1: थैंक यू
0: नवी थैंक यू जी सो के डौड़िया जान थंब दई तूफान
2: शेर दे घुरने च हाथ पाउने दी ओए जट दे डौलियां च जान है जान ओए इन्हां लंडुआं वास्ते जट